अमृत शाड बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा सू प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते हमिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाट कीरत की गुर रामदास राखहु सरनाई। सुखा

देवी सहन सुसहज सुभाय दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसहु कुरसहु चटिया

कृपा मह कोई न जाने तुमरायन ऊचे ते सागल समगरी तुमरा सूतर तारी तुमरी गात मित तुम्ही नानक दास तुदे आ गया यार दास

मन हरलिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजुली पुन वड्डा हे कर डंडावत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साग न जानिया तिन अंतर हम मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चलहे चुभै दुख पावहे जमकाल सहे सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पाव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहुशोभ खंड ब्रह्मंडा है।

छोटा जिहा नेक कम जे वड्डे कम दे प्रगट हो गया तो समझ लेना देव रूहां ने कुछ मदद की थी। दूर क्यों जाओ, कबीर किथे गंगा दे तट ते बैठे 25 साधुआं नू कह आए, शिवरात्रि दा दिन सी, अज दोपहर नू भोजन साडे घर करना, सवेरे अमृत मिले, कह दिता। उन्हां 25 साधुआं ने 2-4 साधु जिहड़े उन्हां दे कोई होर मित्र सन बाहरों आए उन्हां नू कहा, गल फैल गई सारे बनारस दे, पहुंच गए 700-800 साधु। इन्नी भीड़ वेख के कबीर ते निकल गया। 25-30 आदमियों लई अन्न बनाया सी, इतना ही है, होर अचानक लिया सके बना सके इतनी बिसात नहीं सी, इतने को माया नहीं सी, की करे, शर्मसार निकल गया। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे तो संभाल, मैनू नहीं पता, मैं शर्मसार नहीं होना चाहता। शामा पै गई हूं, सोचता जावा घर, पता नहीं उन्हां पंजियां नूं भी मिले है कि नहीं जिन्हां नूं मैं कहा सी। बेइज्जती खूब होई होवेगी, मेरा मजाक अज खूब उड़ाया होना कई ने। ज्यो आया ते घर दे बाहर पतलां दा ढेर, इंज लग्या जिवें बहुत सारे भोजन छक गए। होर नेड़े आए ते दो सज्जन लंघदे हुए कहिंदे ने, धन कबीर धन कबीर, ऐसा लंगर सारियां नूं दक्षिणा भी दित्तियां, धोतियां भी दित्तियां, दो दो मोरां सोने दियां भी दित्तियां, धन कबीर, कहिंदे निकल गए। घर पहुंचे, प्रसन्न चित मां मिली, प्रसन्त चित लोई मिली पत्नी, ऐ सब कुछ देख के जो कबीर ने कहा, ना हम कर किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, मेरी तौफीक नहीं है, मैं नहीं कर सकता। श्लोक है, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, ये क्या जानो किच हर किया भयो कबीर कबीर। पता नहीं रब ने की कर छड़े, कई जाने ने धन कबीर धन कबीर धन कबीर, अपनी ते बिसात नहीं सी। एक दफा नेक इरादा बना लई है, बहुत नेक रूहां मदद करन नो तैयार ने, एक दफा पैड़ा इरादा बना लई है, बहुत सारे भूत प्रेत नाल लगन नो तैयार ने। ते अक्सर भूत प्रेतां दा वासा किथे हुंदा है भी कबीर कोल सुन लो, जे घर साधना सेविए हर की सेवा नाए, ते घर मरहट सार के भूत बसे ते नमाए। भगत कबीर, खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, ये मुक्त लोग जो पूर्ण मुक्त ने, ब्रह्म विच लीन हो चुके ने, ते फिर जगत विच आ जांदे ने, अवतार कहलांदे ने, गुरु कहलांदे ने, पैगंबर करांदे ने, मनुखता दे पहली श्रेणी इना दी है। एक कदी कदाई हजारां साल बाद ही आंदे ने, इस वासे इकबाल ने अपने अनुभव दे आधार ते कह दिता, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैर। मनुखता दे बगीचे च कदी कदाई इस तरह का फुल आंदा है जिदे नाल मनुखता मुअत्तर हो जाए ते दुनिया दंग रह जाए। इस तरह दियां आत्मावां दा आवना रोज रोज नहीं आउंदा, कीड़े मकोड़े रोज जन्म लैंदे ने, गुस्ताखी माफ। इस तरह दे फुल्लां दा जन्म कदी कदा, ये अवतार कहलांदे ने, ये वासना वस होके जन्म नहीं लैंदे। फिर किवें जन्म आउंदा इन्हां दा, हंकार वस होके जन्म नहीं लैंदे, हंकार ते इन्हां दा मर गया, वासना ते इन्हां दी मर गई, लोभ ते इन्हां दा मर गया, शरीर दे होंदे आए सब कुछ मर गया सी, ते जीवन मुक्त सन, फिर मुक्त हो गए शरीर दे अंत नाल, लीन हो गए पार ब्रह्म दे।

0: फिर ये किस तरह आ गए, क्यों जन्म होया? ये दयावश होके आ जाते, तरस खा जाते हैं। जगत नू जलदा देख के, दुखद देख के, अज्ञानता दी ठोकरां खांदियां देख के, तरस खा के फिर आ जाते हैं। तन दी अपनी उम्र आउंदी है जिहड़ा मिलदा है उन्हां नू, पर नहीं ज्यादा दिन तक कुछ वंडीए। गुरु नानक नू दस तनां दा, दस शरीरां दा इस्तेमाल करना पिया। संत बनाना है, उसे संत नू सिपाही बनाना है, बड़ा लंबा कम पूरा करिए। मनुख नू पूरन पुरख बनाना है, पूरा करिए। ये ढाई पौने 300 साल की अवधि, खैर मुख्तसर में अर्ज करा। दूजी श्रेणी मनुखां दी, जप जप के, साधना कर करके, अमृत वेले उठ के, सवेरे शाम सत्संग करके, हर वक्त मन नू प्रभु पासे ला के, इसे जीवन विच मुक्ति पा ली है। इन्हां नू कहिंदे ने भगत संत। अवतार उन्हां नू कहिंदे ने मुक्त ते हो गए सन, फिर आ गए। उम्मीद ए गल पकड़ दे चाहिए होवेगी, साधना कर करके, जप तप कर करके मुक्त हो गए ने, पहुंचे ये भी उत्थे ही ने जिथे अवतार ने। पर ये दोबारा आणगे के नहीं आणगे, इन्हां दी सोचनी ते मुनसर होवेगा। अजे भगत ने, संत ने, परम आनंद देच ने। गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु बाणी दे नाल नाल भगत बाणी, भगत जो भगवान तक पहुंच गए, प्रभु तक पहुंच गए, ये मुकुत ने, भगत ने, संत ने। सुरनर तिनकी बाणी गावे, कोई न सके मिटाई। जद कोई भगवान तक पहुंच जाता है तो उहदे अंदरों भगवान का गीत संगीत निकलता है, भागवत गीता निकलती है। हर भगत दे बोल भागवत गीता ने, यह भी मर्ज करते हैं, गीत ने। नानक भाव जल पार परे जो गावे प्रभ के गीत, केड़े गीत? जो भगतां दे गीत ने, अमर गीत ने। अगर वो कोई गावे मुक्त हो सकता है, क्योंकि मुक्त पुरुषां दे बोल ने, उन्हां दे बोल ने। इह जिहड़े मुक्त पुरुष आउंदे ने, भगत लोग आउंदे ने, इन्हां नूं फिर विद्वानां ने दो हिस्सियां च वंडिया। एक ओ जो रोजमर्रा जगत नूं संदेश उपदेश देंदे रहे, और उन्हां दे अंदरों गीत संगीत जन्म लैंदा रहे। भावें चौक विच बैठ के जोतियां ही गणदे ने रविदास, भागवत गीता ते उन्हां दे अंदरों भी जन्म लैंदी है। भावें खड्डी ते बैठ के सारा दिन कपड़ा बुणदे ने कबीर, लेकिन भागवत गीता ते उन्हां दे अंदरों भी जन्म लैंदी है। भावें सारा दिन कपड़ियां नूं रंगदे ने, छिमदे ने नाम दे, भागवत गीता ते उन्हां दे अंदरों भी जन्म लैंदी। इन्हां दे गीतां दे च भगवान आउंदा है, इन्हां दे बोलां दे च भगवान आउंदा है। कुछ ऐसी श्रेणी भगतां दी जिन्हां कोल शैली शब्दावली अक्षरी ज्ञान नहीं आउंदा, प्रभु दा ज्ञान होंदा, वो फिर नहीं बोले, नहीं बोलते, चुप रहिंदे ने। उन्हां दी खामोशी भी कुछ ना कुछ वंडदी रहिंदी है, जैसे खिड़िया होया फुल, उहदी खामोशी भी महक वंडदी रहिंदी, सुगंध वंडदी रहिंदी। चूंकि इस तरह दे पुरुष बोलते नहीं, कुछ लिखते नहीं, कहिंदे नहीं, तो समाज दे जमीन दे उत्ते उहदे कदमां दे निशान नहीं बणदे। यह भी मैच करते ये भगत दूजी श्रेणी। एक तीजी श्रेणी मैं हुणे अर्ज कीती है, धार्मिक विद्वान पुरुषां ने मनुखां नूं पंज हिस्सियां च वंडिया है, ते हुण गिणती तुसीं अपनी कर लेना, इन्हां पंजां दे च असीं किहड़ी श्रेणी चाहुंदे हां। तीजी श्रेणी परमात्मा ते श्रद्धा भी है ते शक भी है, मन मंदा भी है मन इनकारी भी है। मन ओही कुछ मंदा जो मन दे अनुकूल है, मन उसनू इनकार करता है जो मन दे अनुकूल नहीं। श्रद्धा भी है शक भी है। ये श्रेणी सब तो ज्यादा है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे करीबन करीबन बहुते इन्हां नाल ही भरे हुए ने। गुस्ताखी श्रद्धा भी है शक भी है। गुरु नूं मत्था भी टेकना है गुरु की गल भी नहीं मनने, गुरुद्वारे भी आना है गुरु नाल जुड़ना नहीं है। श्रद्धा भी है शक भी है। इनू मैं इस तरह बयान करदा हुंदा कोई एक कदम अगे चले एक कदम पिछे चले एक कदम अगे चले एक कदम पिछे सारा दिन इस तरह चले तो किथे पहुंचेगा, किधरे पहुंचेगा। मेरिया इन अखां ने देखिया 40-40 साल तो जिहड़े गुरुद्वारे आ रहे ने 40 साल पहले भी क्रोधी सन अज भी क्रोधी ने, 40 साल पहले भी प्रबल लोभ नाल भरे हुए सन अज भी लोभ नाल भरे, 40 साल पहले भी हंकारी सन अज भी हंकारी, 40 साल पहले भी भिकारी सन अज भी भिकारी ने। कुछ भी चले भी बहुत ने, थके भी बहुत ने, टूटे भी बहुत ने, पहुंचे क्यों नहीं। एक कदम अगे एक कदम पिछे, एक कदम अगे एक कदम पिछे। दान पुन भी कर लिया, पाप भी कर लिया, ईमान भी प्रगट किया, बेईमानी भी कर ली, सच भी बोल लिया, झूठ भी बोल लिया, हाथ च गुटका रख के पाठ भी कर लिया, गंदे गीत भी अलाप लिया। श्रद्धा भी है शक भी है। एक कदम अगे एक कदम पिछे, ये तादाद सब तो ज्यादा है, सब तो ज्यादा है। इस तादाद दे चां कुछ लोग धार्मिक किरत अपना लेंदे ने, कथा कीर्तन मौलवी बन गया, कोई फादर बन गया, कोई गुणी ज्ञानी बन गया, कोई पंडित महाराज बन गया। हुण परमात्मा नूं जाणिया ते है नहीं, जाणिया ते कख नहीं, जनाण दी कोशिश पे करदे, समझिया ते कुछ भी नहीं, समझाण दी कोशिश पे करदे, खुद नहीं समझिया। अपना ही मन जिस गल नूं नहीं मनदा पिया उही जगत नूं मनाना चाहते ने। गुरु नानक कहिंदे ने खेड नहीं बनेगी, प्रथमे मन पर बोधे अपना पाछे अवर ले जावे। ये खेड इंज नहीं बनेगी। ये तीजी श्रेणी है। श्रद्धा भी है शक भी है, शक भी है श्रद्धा भी है। इस वास्ते दान पुन भी है, बेईमानी भी है, सेवा भी है, कठोरता भी है, बाणी का जप तप भी है, झूठ बोलना भी है, अनर्थ भी है, श्रद्धा भी है शक भी है। ये तीजी श्रेणी है। चौथी श्रेणी श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, ही नहीं। ऐलानिया कहते कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, साडा की गुरुद्वारे नाल मतलब। अजोके नौजवान कई मिलदे मैं तो सुन के हैरान होना, मन अपना चंगा होना चाहिए, की लोड़ है गुरुद्वारे जाने की। जिवें मन का चंगा होना बच्चों का खेल है, खिडौणियां दी खेड है। दिन रात साधन करने वाले विचारे अपने मन नूं शुद्ध नहीं कर पाते। मन चंगा होना चाहिए जी, मन शुद्ध होना चाहिए। इस तों गल स्पष्ट हो गई, अजे इन्हां विचारियां नूं मन का नहीं पता, सिर्फ तन का ही पता। अजे सिर्फ तन की भज दौड़ है, अजे सिर्फ तन दियां लोड़ां दी चिंता है, अजे इन्हां नूं मन का कुछ भी नहीं पता। जो इस तरह कह रहे हैं, जद कदी मन नूं देखणगे ते पता चलेगा असलियां समस्यावां ते मन दे च ने, चिंता ते मन दे च, भय ते मन दे च, विरोध ते मन दे च, प्रबल वासना ते मन दे च, प्रबल अहंकार ते मन दे च। ये मन मनुख कोल बड़े अनर्थ कराएगा, बहुत अनर्थ कराएगा। नास्तिक साडी कोई आस्था नहीं, साडा कोई भरोसा नहीं। अजोकी नौजवान पीढ़ी ते यही बहुत ज्यादा सवार है, यह भी मैं जरूर। और कम्युनिस्ट कहते ने पता है कि आखते हैं, भोजन की लोड़ है, भजन की लोड़ नहीं है, धन की लोड़ है, धर्म की लोड़ नहीं है, पानी चाहिए स्वच्छ गुरबाणी नु की करना है। कम्युनिस्ट ऐलानिया कहते हैं और दलील देंदे ने चार दिन पानी ना मिलिया पंजवें दिन मौत हो जाएगी। सारी जिंदगी भी मैं गुरबाणी ना पढ़ा तो की होना है, की घटता है? कुछ भी नहीं घटता। इंज कहते हैं जेब दे च धन नहीं है तो जमीन ते चार कदम चलना औखा है। हिरदे दे च धर्म नहीं है सारी दुनिया भ्रमण करके आ जाओ। इंज कहते हैं पेट दे च भोजन नहीं है, जीवना बड़ा औखा है, काम करना बड़ा औखा है। जबान ने भजन नहीं किया कि घट गया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लमकावे ना समा हो गया। मैं अर्ज करा भोजन ना मिलिया तन मरेगा, भजन ना किया जमीर मरेगी, इंसानियत मरेगी, मनुखता मरेगी। ये जीवेगा ते सही जीवदा ते रहेगा, पशुओं की तरह जीवेगा। करतूत पशु की मानस जा, लोक पचारा करे दिन रात। पानी ना मिलिया तन मरेगा, वाह कई मरेगा। गुरबाणी का जाप ना किया मनुखता मर जाएगी। आखां जीवां बिसरे मर, मनुखता मर जाती, इंसानियत मर जाती है, आनंद मर जाता है, रस मर जाता है, ज्ञान मर जाता है, निर्वैरता मर जाती है, दया मर जाती है, अंदर कठोरता रह जाती है। हो ही नहीं सकता ईश्वर नूं भुला के कोई कोमल हो जाए, ईश्वर नूं भुला के कोई ईमानदार हो जाए, ईश्वर नूं भुला के कोई परोपकारी हो जाए, ईश्वर नूं भुला के कोई सुखी हो जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सारे दुख उस नूं चंबणगे परमेश्वर ते पुन्या व्यापन सभेर। एक चौथी श्रेणी लोड़ ही नहीं है, नास्तिक साड़ी कोई आस्था नहीं है। एक पंजवी श्रेणी इतनी बेखबर, ईश्वर ऐसा कोई विषय ही नहीं है, इसते शक कीता जाए या श्रद्धा कीती जाए, इदे बारे सोचिया जाए, इत कोई ऐसा विषय ही नहीं है। ये पंजवी श्रेणी है जिन्होंने भूल के कदी इस संबंध सोचिया भी नहीं, कदी ख्याल भी नहीं आया। ये पंज श्रेणियां हैं तो खुद ब मुनसफ शुद्ध, अपना मुनसफ आप बनना है, अपनी जजमेंट आप करनी है। असी किस श्रेणी चाहते हैं? असी कि कलास के विद्यार्थी, किस कलास ने? चूंकि फैसला हर मनुख ने आप करना है, दूजा की जाने? थानू की पता मेरे मन की चलता रहा है, मैनू की पता थोड़े मन की चलता रहा? तो खुद ब मुनसफ शब्द, अपना मुनसफ आप बनना, अपना फैसला आप करना। साहब रहमत करना, असि इस दूजी श्रेणी च आईए। धन गुरु नानक देव जी महाराज के बोलों नूं अपना के, धन गुरु हर राय साहब जी महाराज के प्रकाश उत्सव नूं मना के, जिस तरह भाई गौंदे ते बख्शिशां होईयां, ए गुरु हर राय साहब अज साडियां भी झोलियां भरना, तेरे दर तो खाली ना जाई। श्रद्धा नाल भर जाए साडी झोली, रब्बी विश्वास नाल भर जाए साडी झोली। जो शक शुबे अंदर ने, हे धन गुरु हर राय साहब इस नूं कढ़ो, ऐसा भरोसा पैदा करो कि एकदम ख्याल आ जाए सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। बाकी विचारा मैं थोड़े सामने आज शाम नूं रखांगा। ये फैसला तुसी आप कर लेना जिस श्रेणी च हो। जिन्ने चिर तक इस दूजी श्रेणी च नहीं आए, मुक्ति नहीं है, आनंद नहीं है, भगत नहीं बने, उन्ने चिर तक खेड नहीं बनेगी। पंडित सूर छतरपत राजा भगत बराबर और ना कोई। भगत मुक्त हो जाता है एक दिन, तन का अंत हो जाता है, फिर इसकी मर्जी आती है मैं फिर जन्म लेना है कि नहीं, क्योंकि मुक्त है। कि जो मुक्त है दी मर्जी नहीं, वासना इसनों जन्म देवेगी और भटकेगा, हंकार इसनों बार बार जन्म देवेगा। हमें यही बंधना फिर जो नहीं पाए, मुड़ मुड़ जोनिया दे भटकता रहेगा। साहेब रहमत करन, बख्शिश करन, प्रभ की आ गया आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੜ ਸਕੀਏ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

बादे जनपुर जाहे कबीर उजल पहरे कापरे पान सुपारी खाहे एकस हर के नाम बिन बादे जमपुर जाहे कबीर बेड़ा जर जरा फूटे शेंक हजार हरवे हरवे तिर गए

कि बंदे नूं खुराक चंगी नहीं खानी चाहीदी। यह खंडन क्यों किया गया है? बस एक नुकता याद रखियो, जिथे परमेश्वर दा नाम भुल जाए अपनी खौमे ही हर थां ते मैं बोले, उथे भावे कपड़ा होवे ते भावे भोजन होवे सतगुरु नूं स्वीकार नहीं करदे। नाम तो बिना कहिंदे ने खुआर है। एक महाराज जी का सलोक है जी, आप हुण बाणी पढ़ांगे। वह सलोक है, सौ उलामे दिन के राती मिल सहंस, सिपत सलाहन छड़ के करंगी लगा हंस। गुरमुखो फिर मैं बेनती करांगा, पाठ जरूर गुरु ग्रंथ साहब का करिया करो प्लीज। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि ठीक है, असी बहुत गल्लां करनियां बाकी सारियां। किन्ने क सज्जन ने जेड़े रोज पांच सात अंग गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते? हां बहुत, मैं सच्ची कहांगा, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ असी प्रचारक बाद चा, कीर्तनीय बाद चा, प्रबंधक बाद चा, नेता बाद चा, सब तो पहला आपां सिख हां। ते रहत मर्यादा च लिखा सिख का फर्ज बनता अपना सधारण पाठ जारी रखे। उत्थे सधारण शब्द वरते है जी, चलो मैं सहज पाठ वरत लिया। फिर उहदे विच इह रस हुंदा है, बाणी दी व्याख्या बाणी करदी है। भगत जी ने शब्द वरते है कि जिहड़ा विखावा करदे ने सौ उलामे दिन कै परमात्मा नूं भलान दे, उहनां बंदिआं नूं सौ उलांभे मिलदे आ। राती मिलन सहंस, सारी रात विषय वासना च गवा दित्ती, उहदे हजारां उलांभे मिलदे आ। अगे कहिंदे सिफत सलाहन छड कै करंगी लगा हंस। सुणियो ध्यान नाल, करंग दा लफ़्ज़ी अर्थ हुंदा है पिंजर। इत्थे इक शब्द वरत्या हंस, हंस कदी पिंजर नाल नहीं जुड़दा हुंदा। क्या कमाल दा वचन कीता जी गुरु नानक साहिब जी ने। महाराज कहिंदे सौ उलामे दिन दे ने रब भुलन दे, हजारां रात दे ने ओ कमलिया बंदिया तू हंस सैं। हंस दा काम है मोती चुनना, हंस दा काम है दुध ते पानी वाक करके दुध नू खा लैंदा सी फुटियां, हंस दा काम है के डूंगे पानी नू तर जाना, हंस दा काम है दरिया दियां लहरां नू चीर के निकल जाना। कमलिया बनाया तेनू हंस सी, ते तू आ चमड़ी दा पिंजर इहनू खाई जाना। ए तू खचत हो गया, मतलब तू वासना च प्रवृत्त, तू हंस नहीं रहा। जरा हंसी करंग चूंडन लग पे ओनू हंस कहांगे जी? आप गिरज तो कहा जा सकता है। इथे हंस दे लफ़्ज़ी अर्थ मैं आत्मा नहीं कर रहा, हालां गुरबाणी च यह हंस का अर्थ सिख भी है, हंस का अर्थ आत्मा भी है। इथे हंस का अर्थ करांगा ओ हंस बिरती जिदी खुराक जमांदरू मोती सी। तू शब्द का मोती चुनना सी, तू बंदगी का मोती खाना सी, तू सतगुरां दे बचन दे मोती खाने सन, पर बनाया तेनू हंस सी निकम्मिया। तू इन्ना क जीव दे चस्के चला गया, तू मास चमड़ी दा, इहदा मतलब तू शरीर दी वासना नू खाई जा रहा। फिर अर्ज है सौ उलामे दिन कै राती मिलन सहंस, सिफत सलान छड़ कै करंगी लगा हंस। अगली गल ध्यान नाल सुनियो, बंदा खा के कहिंदा वी कमाल करती इन्ना कुछ छकिया। महाराज कहिंदे फिट अवेहा जीविया। मैं अजकल हर गुरुद्वारे कहना, मैनू कहिंदे भी तुसीं क्यों अजकल कहिंदे हो, मैं कहिंदा सच्ची जे अद्धों यादे लोग जीव दी खातर लंगर चाहुंदे आ ते ओह गुस्सा भी कर जांदे आ। ते मैं उस दिन सनोजे किते कहा सी, ये मोटी को नहीं हुंदी जिहड़ा अंदर भड़ोला बनी जांदा बंदे दा। ये गुरु साहिब ने बाणी च कहा कि बंदिया तू आ जीव दे चस्के दी खातर फिट अवेहा जीविया, जित खाए वधाया पेट। नानक सच्चे नाम बिन सबो दुश्मन खेत, नाम तो बिना जेड़े तेनू प्यार करदे ने ओह भी तेरे दुश्मन बन जाणगे। इहदा अर्थ आपां कर रहे हां, चिट्टे कपड़े पा रहे हैं पान सुपारियां खांदा पिया जी। महाराज जी ने कहा एक चंगी गल नहीं, खंस जेड़ा है ओह कुरंग इह पिंजर चूंडदा पिया है। एक बचन होर आपां लांगे, इह वैसे साडा इतिहास कहिंदा कि जदों औरंगजेब बादशाह बाला प्रीतम धन गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं मिलन आया, क्योंकि अज दे आधुनिक विद्वान कहिंदे ने जी ए नहीं सी जी मर नहीं, सतगुरां ने जी कहा नहीं मलेश को दर्शन देना ते नहीं दिता। ते उस दिन मैं एक अर्ज होर कीती सी, मैं फिर इत्थे रिपीट कर लगा कथा परसों वाली। दिल्ली विच पीरी दे सिधांत की व्याख्या हुई सी गुरु हरकृष्ण साहब जी ने कीती, क्योंकि असीं मीरी पीरी शब्द वरतने आ। जिहड़ा बादशाह है उहदे मतहत किन्ने राजे हुंदे ने जी, राजपूत भी सन, पहाड़ी भी सन, मुसलमान भी सन। ते जेड़ा शहनशाह है उहदे थल्ले जेड़े राजे ने, उस राजे नूं उस समय दसना पैंदा सी मेरी मौत तो बाद

0: अष्टपदी
1: जिसके अंतरराज अभिमान
0: सो नरकपाती होवत स्वान
1: जो जाने मैं जो बनवंत
0: सो होवत विष्टा का जंत
1: आप उसको कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन कुम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे
0: नानकी है मुक्तिया गै सुख पावे
1: धनवंता हुए कर गर्भावे
0: तृण समान का चंग न जावे
1: बहु लश्कर मानुक ऊपर करे आस
0: पर भीतरता का हुए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: में हुए जाए पसमंत
1: सेना बदा आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगह परवान
1: कोट कर्म करे हो तारी
0: शरम पावे सक दे बरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगह को कैसे कवे
1: आप को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट न आवे
1: सर्व की रेन जा का मन होए
0: कहो नानक ताके निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: तब इस को सुख नाही कोए
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब धारे को बैरी मीत
0: तब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुर प्रसाद नानक हो छुटे
1: सहस कटे लख को उठतावे
0: कृतन आवे माया पछे पावे
1: अनक भोग विद्या के करे
0: नैत पतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सुपन मनोरथ फिर थे सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभ सोए
1: जो किस पीनो सो अपने रंग
0: सब ते दूर सब हूं कै संग
1: दूजा देखे करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न बिनसै आवे न जाए
0: नानक सब ही रह समाए
1: आप उपदेशे समझे आप
0: आपे रचिया सबके साथ
1: आप कीनो अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पुस्ते भिन्न कहो किश होए
0: अंत अंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सत सत सत सब कीना
0: कोट मदय के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनुरूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कट कट सुनी सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत सरन जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत के दुखन आरजा कटे
0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत होए मलीन
0: संत के दुखन शोभा देहीन
1: संत के हथे को रखे ना कोई
0: संत के दुखन थान भ्रष्ट होए
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक भीतरे
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यों लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जले
0: संत के दुखन सब को छले
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाउ को नाही
0: नानक संत भावै ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खिन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हथियारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख मैं दुख
0: नानक संत भावै ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा अपवित
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लगे
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊं
0: नानक संत भावे ता लए मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उदयान परमाइए
0: संत का दुखी उजड़ पाइए
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही
0: आपन बीजा पे ही खाहे
1: संत के दुखी को अवर न रखन हार
0: नानक संत भावे ता लए उबार
1: संत का दुखी इउं बिल लाए
0: जो जल पे हून मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजै
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: जो गुआर तेरे खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन निंदक का तुर ही पया
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइय
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइय
1: संत के दुखी की पूजा न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न दृष्टि कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिस को नमस्कार
1: रबी उसत करहो दिन रात
0: तिसे त्यागो सास गिरा
1: सब कछ वर्तै तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वड पागी नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राय
0: एक आस हर मन रखो ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪਉ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਨ
0: ਜੇਵਨ ਪਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ
1: ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਹੇ
0: ਪਉ ਨ ਤਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ
1: ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ
0: ਨਾਨਕ ਕੈ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹਾਥ
1: ਜਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਜਿਸਕਾ ਨਾਮ ਰਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ
1: ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ
0: ਕਰਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ
0: ਸਦਾ ਸਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ
1: ਨੈਨੋ ਪੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ
0: ਆਦਰ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ
1: ਵਡ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
0: ਚੇਤਨ ਮੰਤਕ ਨੀ ਸੰਸਾਰ
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ
0: ਤੇ ਤੁਤ ਕੀਓ ਸੋਝੀ ਜਾਣੈ
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
0: ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ
1: ਧਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ
0: ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ
1: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਨ ਕੀ ਫਸ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ
0: ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਜਿਤੇ ਆਵੈ
0: ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵੈ
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ
1: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ
0: ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ
0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਪੂਜਿਆ
1: ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਸ਼ਮੂਲ
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ
1: ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਚਨ ਮੈਂ ਨਹਿ ਕਿਸ਼ ਮਰੈ
0: ਆਪਣੇ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ
1: ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ
0: ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾ ਬਿਉਥਾ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸ਼ ਖੰਡ
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਲੱਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ
1: ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਪਾਵੰਤ
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ
0: ਗੁਰਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ
1: ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ
0: ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਟ ਭਾਗੈ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰਮਾਨ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਸਤਾਪ ਸਹਿ ਹਰ ਸੰਗ
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ
0: ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ
1: ਜਪ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤੇ ਸਮਾਹੀ ਸਮਾਏ
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ

गुनहगार तो मी साध न मारिए जी हका लिखा लना ते वना उपचारिए सी का लना खेडिए जित दर कह गया हारिए पड़िया ते उम्मीद विचार के विचारिए मोह चले सो अगे मारिए।

वस्त्र कपड़े पहरे तुर्क पठानी मिलकिया चारे वे दोहेश्चार पड़े गुणे तन चार विचार पौ भगत सदाए तो नानक मोखन तेरे पाए।

साहब को दयाल कृपा करे तो सही कार कराए तू सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म लाए सी हुक्म मने होवे प्रमाण तक खसमे का मिल पाए सी खसमे भावे सह करे मने चुंदिया सो फल पाए सी तां दरगे पैंदा जाए सी।

खेते अंदर सब को वेख नजरी हेठ चलाईंदा आपे जे वडियाई आपे ही कर्म कराईंदा वड्डो हो वड्डा वड में सिर सिर धंधे लाईंदा नदर पट्टी जे करे सुल्ताना काहो कराईंदा दरमंगर भिख ना पाईंदा।

को कह न सकत केहे, अचल मूरत अनुभव प्रकाश। अमित ओज कहे जय, कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गणिजय। त्रिपाउन महीप सुर नर असुर, नेत नेत बन त्रिण कहत। त्वय सर्वनाम कथय कवन, कर्म नाम वर्णत सुमत। सेवक कौ सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। तख्त बह तख्ते की लायक, पंच समाए गुरमत पायक। लाख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुर नदर करे, निमके एक हर नाम दे।

तो सात संगत जीओ एक बार फिर तह दिल तो गुरद्वारा साध समुची मैनेजमेंट वालों सिंह साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस अस्थान के उपर एक महीना कथा द्वारा सेवा निभाई है।

0: एस पी जी सब्जी फल खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.
2: हमारी सरकार आ गई है 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी
3: है। So the Musiala baby, yeah,
4: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट

हस्त खेलत तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। मंदिर देच भक्ति करदिया प्रभु दे गीत गाउंदिया क्यों उठाए गए, क्यों बाहर कड्डे गए? क्योंकि शूद्र जाती दे सन, ते शूद्र जाती लई मंदिरां दा प्रवेश बंद सी। आप स्वयं कहंदे ने, हस्त खलित तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। हीनड़ी जात मेरी जात मराया, छीपे के जन्म मुखो काहे को आया। भक्ति भाव विच भिजे गीत आप जुगारे सन, ते मंदरां विच जो कथा कीर्तन होंदा सी उस दे जो सुनन दा आप दे अंदर शौक सी, लेकिन ब्राह्मणां दा जो व्यवहार सी उस तो दुखत होके आप कहंदे ने, छीपे के जन्म मुखो काहे को आया। हे प्रभु, तू छीबे दे घर मैनू जन्म क्यों दिता? क्योंकि भक्ति करन दा अख्तियार लोकी मैनू नहीं देंदे, मंदरां दे चों धक्के मार के कढ़दे ने। ले कमली चलियो पलटाए, देहुरे पाछे बैठा जाए। आखिर अपना चदरा विछा के जिस दे उत्ते बैठा होया सी उन्नू संभाल के समेट के मंदिर दे पिछवाड़े जा बैठा। आप दा ही वाक है, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, भगत जना का देहुरा फिरे। जैसे जैसे वो प्रभु दे गीत गाउंदे ने, प्रभु विचलीन होंदे ने, वैसे वैसे मंदिर फिरदा है। और मंदिर दा जो मुख द्वार सी उस दा मुंह नामदेव जी दी तरफ हो गया, मूर्तियां दा मुंह नामदेव जी दी तरफ हो गया, और पंडियां दी तरफ पिछवाड़ ला। फेर दिया नामे को देहुरा, पंडियन को पिछवाड़ ला। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा भी फरमान है, हंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देव मुख लाया। ए मंदिर गौंडा देच अज भी मौजूद है, श्री सचखंड हजूर साहब तो गालबन 40 मील दी दूरी ते औरंगाबाद रोड देते एक गौंडा नाम दा बहुत वड्डा तीर्थ है। इस औंडा नाम दे तीर्थ दे उत्ते ही श्री नामदेव जी महाराज ने ये प्रभु दे गीत गाए, ते आप नूं तक्के मार के बाहर कढ़िया गया। ये मंदिर इतिहासक मंदिर है और कस्बे दा नाम औंडा है। महाराष्ट्र दे बेशुमार तीर्थां दे चों ये अस्थान भी तीर्थ सतल करके बहुत मशहूर है। और श्री नामदेव जी महाराज दा भी अस्थान इस मंदिर दे च अज बनया है। भावें आप शरीरक रूप दे जद मौजूद सन तां आप नूं धक्के मार के बाहर कढ़िया गया, लेकिन अज उन्हां दी मूर्ति मंदिर दे द्वार तों बाहर स्थापन कीती हुई है। और दूरों ही पुजारी आवाज मार दें, संत नामदेव दे दर्शन करो, संत नामदेव दे दर्शन करो। लेकिन ए अजूबा पृथ्वी ते मौजूद है कि मूर्तियां दा मुंह एक पासे है, मंदिर दा मुंह दूसरे पासे है। और ए अजूबा कहंदे ने श्री नामदेव जी महाराज करके होया, क्योंकि आप नु जब धक्के मार के बाहर कढ़िया गया, आप पीछे जा बैठे तो मूर्तियां ने भी रुख नामदेव दी तरफ ही कर लिया। खैर महाराष्ट्र देच भ्रमण करदे हां, प्रभु गीत गाउंदे हां, आप मनुखता लई एक पवित्र माहौल बना रहे सन। दरअसल भगत दा होना ही वातावरण दा पवित्र होना है। ओदे शरीर दे चों जो लहरां निकलदियां ने, तिरंगा निकलदियां ने, ओ आस पास दे माहौल नूं पवित्र करदियां ने। जैसे कि भगत कबीर दा कहना है, कबीर सो मुख धन है, जय मुख कहिए राम, देही किसकी बापुरी, पवित्र होए गो ग्राम। देही दा ते कहना कि एक सुरत होके जो प्रभु गीत उचारण करने ने, प्रभु सिमरन करना है, ओदे नाल ते सारा नगर पवित्र हो जांदा है, सारा शहर पवित्र हो जांदा है। तो नामदेव ने थां थां ते महाराष्ट्र देच भ्रमण करना आरंभ कीता। इस तों बाद आपने समस्त भारत दा वी रटन कीता। दहली दे जद आप आए ते आप दे
ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਜਦ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਤ ਤੇ ਸਤਾ ਦਾ ਝਗੜਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਨੀ ਭੀੜ, ਇਤਨਾ ਇਕੱਠ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਤਾਧਾਰੀ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਨੀ ਭੀੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਕਪਿਲਾ ਗਊ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਵਾ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ, ਹਮਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋਏ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਚ ਆਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਜ ਹੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗਏ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਰਾਜ ਹੱਟ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਸ ਦੇ ਚ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਵਾਕਈ ਰਾਜ ਹੱਟ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਆਮਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਆਦਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਹੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ, ਪਰ ਸਤਾਧਾਰੀ ਹੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਤਾ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਝੂਠ ਤੇ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਾ ਤਰਕ ਤਾਜ਼ੀ ਬ ਮਕਰੋ ਰਾਇਆ, ਮਰਾ ਚਾਰਾ ਸਾਜੀ ਬ ਸਿਦਕੋ ਸਫਾ। ਮੈਂ ਸਿਦਕ ਤੇ ਖੜਾ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੜਾ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਖੜਾ, ਐ ਸੁਲਤਾਨ ਤੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਖੜਾ, ਫਰੇਬ ਤੇ ਖੜਾ, ਫਰੇਬ ਤੇ ਖੜਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਟ ਹੈ। ਸੱਤ ਤੇ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਤਾਧਾਰੀ ਸਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਵਾਦੀ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਸੀਤਲਤਾ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਇਹ ਜਵਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਨੂੰ ਜਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਨਾੜ ਸੇਠਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਲ ਲਾਉ ਤਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਭਰੋ, ਮੈਂ ਦੋਜ਼ਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਧਨ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਨਾਮਦੇਵ ਨਹੀਂ ਜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਧਨ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਸਾ ਕੱਢੋ, ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਮਾਰਗ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਤੀਕਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ
ਤੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਾਇਮ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰਮਣ ਦੇ ਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੇ ਖੁਦਾ ਹੈ ਛੱਡ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਐਸੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਧ ਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦ ਕਾਰਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਧਾਰਾ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਤੋ ਮਨੀ ਦਰਿਆਓ ਤੂੰ ਦਹਿੰਦ ਤੋਂ ਬਿਸਿਆਰ ਤੋਂ ਧਨੀ ਦੇਹ ਲੇਹ ਏਕ ਤੋਂ ਦਿਗਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਬੀਨਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਕਰੀ ਨਾਮੇ ਚੇ ਸੁਆਮੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਤੋਂ ਹਰੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਤੋ ਮਨੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧੁਨ ਰਟਦਾ ਕਈ ਦਫਾ ਕਰੀਮ ਕਰੀਮ ਰਹੀਮ ਰਹੀਮ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਚ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਆਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਬਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਆਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤੋ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਾਂਗਾ ਮੌਜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਤ ਘੜੀ ਜਬ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ ਅਜੂ ਨਾ ਆਏ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਧਨੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਛੋੜਦਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਨਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਉੱਠ ਖੜੋਈ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸੂਲ ਪੈ ਗਏ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਅਥਾਹ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ ਪਛਤਾਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕੀਤੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜਾ। ਹਰ ਯੁਗ ਦੇ ਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਰ ਵਾਪਸ ਪੰਡਰਪੁਰ ਆਏ। ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਨਾਲ ਉਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਔਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਛੀਂਬਾ ਨੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੰਭ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਗੀਤ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖਿਲੇਰੇ ਕਿ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਤਾਰਕਿਕ
पुरोहित लोगों ने विद्वाना ने आप तो पुछया कि तुसी अपना हिरदा प्रभु नाल किवें जोड़े, की युक्ति है, की युक्ति है, आखिर ढंग की वरते है, तौर तरीका की वरते है। तौर तरीका कबीर तो भी किसी वक्त पूछा गया से, ता आपने साफ कह दिता सी, तज भरम करम बिद निखेद, राम नाम ले ही गुरु प्रसाद जन कबीर, राम कर सने बिद निखेद, बिदि निषेध, कोई बिदि नहीं है, कोई ढंग नहीं है, कबीर कहते ने कोई ढंग नहीं है। भरे आया ठंडा पानी दा गिलास मनुख दे अगों रख दई है, ते ओ पीण दा ढंग पुछे, विधि विधान पुछे कि पीण दा ढंग की है, विधि की है, तो गल स्पष्ट हो गई कि इस बंदे नू प्यास नहीं लगी। 36 प्रकार दा भोजन परोस के किसे मनुख दे अगों रख दई है, ते ओ ए आखे कि छकण दा ढंग की है, भोजन करन दा ढंग की है, ते गल स्पष्ट हो गई इसनू भुख नहीं लगी। भूखे खावत लाज ना आवे, भुखा मनुख ढंग नहीं पुछदा हुंदा, तौर तरीका नहीं पुछदा हुंदा, ओ छकण लग पैंदा है, खान लग पैंदा है। ढंग तौर तरीके दा पुछना ही इस गल दा सबूत है कि इसनू भुख नहीं लगी। श्री नामदेव जी महाराज तो ए पुछ कीती गई, ढंग की है, तौर तरीका की है। कबीर कहिंदे जद मनुख दे अंदर सतसंग करदे आ प्यास पैदा होंदी है, भुख पैदा होंदी है, ते भुख पैदा होंदे ही ओ ईश्वर दे गीत अलापन लग पैंदा है, ओ ईश्वर दा नाम उचारण करन लग पैंदा है। जैसे भुख लगे ते बच्चा रोण लग पैंदा है, सतसंग दे च बैठदियां बैठदियां जद सत दी भुख पैदा होंदी है, ते रसना अपने आप ही सतनाम उचारण करन लग पैंदी है। तरीका आपदे कोल पुछया गया, दसो नाम देव तुसी अपना हिरदा परमात्मा नाल किवें जोड़े। आखिर एक नियम है कि दोहां नूं जोड़न लई तीसरे दी लोड़ पैंदी है। दो इट्टां नूं जोड़ना है, गारा चाहिदा है, दो कागज जोड़ने ने गोंद चाहिदी है, दो कपड़ियां नूं जोड़ना है सुई धागा चाहिदा है, दो लकड़ां नूं जोड़ना है सरेश चाहिदी है। तुसी अपना हिरदा प्रभु नाल जोड़िया है किवें जोड़िया। तो आप दा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च बड़ा कीमती वाक है कि सोए ने की सोई रुपे का धागा नामे का चित हरसों लागा। नामदेव ने अपना चित हरि नाल जोड़ लिया, किवें जोड़िया, किस तरह जोड़िया, सुई धागे नाल सी लिया। सुई केड़ी सोने दी, तागा केड़ा चांदी दा, सोईने की सुई रुपे का धागा नामे का चित हरसों लागा। सोने दी सुई की है, गुरु दा शब्द, गुरु दा मन मंत्र, गुरमन मंत्र, ए सोने दी सुई है। तागा की है, उदिच ध्यान जोड़ना, उदिच सुरत जोड़नी, ए तागा है। जैसे वाहेगुरु वाहेगुरु दा उचारण करिए, इते सोने दी सोई है, पर इहदे च ध्यान जोड़िए, ए धागा है, ते ध्यान दे नाल ही मनुख सुन सकेगा, उंज सुन भी नहीं सकेगा। जैसे कि एक उच्ची उच्ची बोल रहा हुंदा है, दूसरा सुन रहा हुंदा है, ते सुनन वाला अचनचेत कह देंदा है, मित्रा ए गल फिर आखो, नहीं सुनी, क्यों नहीं सुनी, कहिंदा मेरा ध्यान किसे होर पासे चला गया। तो ध्यान धागा है, इसनु गुरु नानक देव जी महाराज इंज कहंदे ने, धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरुमुख अकथ कहानी। तो गुरु दा जो मंत्र है ए सोयने दी सोई है, और इस दे विच जो मैं अपनी सुरत जोड़ी है, ध्यान जोड़े है, ए धागा है, सुई चलदी रही, धागा नाल चलदा रहा, मेरा हिरदा प्रभु दे नाल सिलदा गया, जुड़दा गया। आम जगत विच देखण विच आया है कि मनुखां कोल सुई ते है, धागा नहीं। राम राम रटन कर रहे ने, ध्यान नहीं है। वाहेगुरु वाहेगुरु दा उच्चारण कर रहे ने, ध्यान नहीं है। तो सोने दी सुई ते चल रही है, धागा नहीं है। बिन धागे बिन सुई आनी, धागे तो बिना सुई की करे, किस तरह सीवेगी, किस तरह जोड़ेगी,
तो धुन देच ध्यान दा जोड़ना, शब्द देच सुरत दा जोड़ना, मंत्र देच ध्यान दा जोड़ना, इंज है जैसे सुई देच तागा जो है परोरना। इस ढंग नाल जद सुई चलदी है ते नाल तागा चलदा है, मनुख दा हिरदा प्रभु नाल जुड़ जांदा है। यही आप कह रहे ने, सोईने की सुई, रुपे का धागा, नामे का चित हर सौ लागा। हरी नाल चित जुड़ गया ते हरी ते आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप नाल जुड़दे ही आनंदमई अवस्था मनुख दी बन जांदी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा भी फरमान है, चित्ते चित मिलाए ता होवे रंग घना। परमात्मा दे चित नाल तू अपना चित जोड़, अथा रंग बनेगा, अथा सुख बनेगा। क्यों कि मित का चित अनूप सो मरम न जाने। परमात्मा दा चित अति सुंदर है, आनंदमयी है, रहस्यमयी है, गुण निधान है। प्रभु दा ऐसा चित जेदे सारे गुण ने, सारा आनंद है, सारिया सुगंधियां ने, सारा खेड़ा है, सारा स्वप्न है। जैसे कोई प्रभु दे चित नाल अपना चित जोड़दा है, जगत दी सारी स्वप्न नाल उसने अपना चित जोड़िया, जगत दे सारे संगीत नाल उसने अपना चित जोड़िया। जैसे उस परम संगीत दे नाल ते परम स्वप्न दे नाल चित जुड़दा है, मनुख दे अंदर भी परम स्वप्न ते संगीत दा जन्म होंदा है। मित का चित अनूप सो मरम न जानई, गाहक गुनी अपार सो तत् पछानई। चित्ते चित मिलाए ता होवे रंग घना, हरहा चंचल चोरे मार ता पावे सुख घना। चूंकि परमात्मा दे चित दे च परम नाद है, परम संगीत है, उस नाल जुड़दे हां, परम संगीत दियां धुनियां मनुख दे अंदर वजनियां शुरू हो जांदियां ने। उसदा जिक्र श्री नामदेव जी महाराज अपनी बाणी च इंज करदे ने, अणमणिया मंदल बाजे बिन सावन घनहर गाजे, बादल बिन बरखा होई जो तत् बिचारे कोई। मेरे अंदर एक ढोल वज रहा है, नामदेव कहंदे ने, लेकिन वो चमड़े दा मड़िया होया नहीं है, पर वज रहा है, अठे पैर वज रहा है, बड़े सुर दे च वज रहा है, बड़े ताल दे च वज रहा है। अणमड़िया मंदल बाजे, अज तक दे तमाम सिरमोर भगतां ने ऐसा आख्या है कि साडे अंदर संगीत दी धुन चलदी है, राग दी धुन चलदी है। ते राग दे जन्मदाते भी संत लोग ने, भगत लोग ने। दरअसल परमात्मा की है परम सुंदरता और परम संगीत, परम रस, परम आनंद। परमात्मा नाल जुड़ना परम आनंद नाल जुड़ना है, परम संगीत नाल जुड़ना है, महान स्वप्न नाल जुड़ना है। ये ठीक है कि पुराने समय दे वैदिक ऋषियां ने भी जो ईश्वर दे गुण मने ने इस ढंग नाल मने ने, सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत है, शिवम वो प्रकाशमान है, सुंदरम वो अति सुंदर है। सत चित आनंद वो सत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत सुहाण सदा मन चाओ, गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, वो सत है सुहाण, वो अति सुंदर है। सदा मन चाओ वो सदी भी खिड़िया है, उसदे चित दे सुंदरता है, दैवी गुणा दी स्वप्न है, परम संगीत है। तो परमात्मा नाल जैसे कोई जुड़दा है, परम संगीत नाल जुड़दा है, परम स्वप्न नाल जुड़दा है, परम आनंद नाल जुड़दा है। इस वास्ते नामदेव जी महाराज कहंदे ने कि मेरे अंदर परम आनंद दी छाप लगी है और मेरे अंदर दैवी गुणा दी परम सुंदरता प्रगट हुई है। आप ते साफ कहंदे ने, प्रण में नामदेव ना के बिना ना सोहे बत्ती लखणा। शरीरक तल ते अगर सुंदरता दे बत्ती लखण भी मनुख दे कोल आवन, पर दैवी सुंदरता, दैवी गुणा दा जो स्वप्न है, ए बंदे कुल ना होवे तो 32 लक्षण भी किसे काम दे रहे। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना सब कुबज करूप। पावे कितना ही सुंदर होवे, अत सुंदर कुलीन चतुर, मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। तो नामदेव जी महाराज कहंदे ने, मेरे अंदर परम स्वप्न पैदा होया और परम आनंद पैदा होया, ते परम संगीत दियां धुनियां मेरे अंदर पैदा हो गईयां ने, नाद वज रहा है। अणमणिया मंदल बाजे बिन सावन घन हर गाजे, बिना सावन तो
میرے اندر بدل گرجدے پینے ہیں، کبیر امبر گھن ہر چھایا، برکھ برے سرتال، چاترک جیوں ترست رہے، تن کو کون حوال، گرو روپی بدل میرے اندر گرج رہے ہیں، پرماتما دا گرجن شروع ہے، اور امرت نام دی برکھا میرے ہردے تے ہو رہی ہے، پرم سنگیت پرم ناد میرے اندر چھڑے ہویا ہے، اور اتھوں گل سپشٹ ہو گئی، پربھو نال جڑنا، پرم سنگیت نال جڑنا ہے، پرم ہریاول نال جڑنا ہے، پرم آنند نال جڑنا ہے، پرم سوپن نال جڑنا ہے۔ श्री नामदेव जी महाराज के अंदर भावना प्रधान है। दरअसल भगत नामदेव जी महाराज भावना प्रधान पुरुष ने, ते जिथे भावना प्रधान है, जज्बे प्रधान ने, बस ओही भगत है। दो तरह के मनुख ने, कोई अकल दे तल ते जीवंदा है, कोई हिरदे दे तल ते जीवंदा है, कोई बौद्धिक तल ते जीवंदा है, कोई दिल दे तल ते जीवंदा है। जीवन दे ए दो ढंग ने। जो बौद्धिक तल ते जी रहा है उस दे अंदर विचार प्रधान होवेगी, जो हिरदे दे तल दे ते जी रहा है उत्थे भाव प्रधान होवेगा, पर जो ना बौद्धिक तल ते जी रहा है ते ना हिरदे दे तल ते जी रहा है वह मनुष्य ही नहीं है, वह पशु है। पशु इन्हां दोहां थल्लां तो थल्ले ही जीवंदा है। इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, भाव प्रधान है कि विचार प्रधान है। दरअसल विचार नाल वस्तु नू समझना है, हस्ती नू समझना है, और भाव नाल हस्ती नाल जुड़ना है, वस्तु नाल जुड़ना है। अगर भाव ना होए तो जुड़ नहीं सकांगे, विचार ना होए तो समझ नहीं सकांगे। जन्म तो मनुख भाव ही लेके आंदा है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई कि विचार नालों भाव की आवश्यकता ज्यादा है, अधिक है। भाव प्रथम है, विचार बाद देच है। भाव करके एक मासूम बच्चा मां नाल संबंध जोड़दा है, पिता नाल संबंध जोड़दा है, भैणा नाल संबंध जोड़दा है, भरावां नाल संबंध जोड़दा है। अजे ते विचार की दुनिया उत्थे आरंभ ही नहीं हुई, अजे ते भाव की दुनिया। कहिंदे ने परमात्मा नूं समझण दे विच ही ज्ञानियां दा समा लंघ जांदा है, और फिर भी पूरा समझना उस नूं कठिन है। थोड़ा जिहा जो तू समझे उहनूं हुण अपनी जिंदगी दे विच प्रयोग दे विच लिया, तो हुण जज्बा पैदा कर, भाव पैदा कर, श्रद्धा पैदा कर, ते उस नाल जुड़। जितना भी तू विचारेगा, विचारां दी पहुंच उस प्रभु तक नहीं होवेगी। थोड़ी बहुत जो विचार दे राही तेनू झलक मिली है, तो हुण जुड़न दी कोशिश कर, पर विचारां दी दुनिया जो बहुत अगे लंघ जाए, महान दार्शनिक हो जाए, महान फिलोसफर हो जाए, तो फिर उस लई जज्बियां नूं पैदा करना बहुत कठिन हो जांदा है। उर्दू दे अजीम शायर इकबाल दा ऐसा कहना है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है, निकल जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। ऐ बंदे अकल दी दुनिया तो अगे लंघ जा, जज्बियां दी दुनिया च पहुंच, वलवलियां दी दुनिया च पहुंच, भावना दी दुनिया च पहुंच, जे तू कोई रस लेना है, स्वाद लेना है, आनंद लेना है। हकीकत है अकल ते रस्ते दा दीवा है, अकल ते रस्ते दा चानना है, ते हुन दीवे दी ही कोई परिक्रमा करदा रह जाए ते मंजिले मकसूद तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। आम आख्या जांदा है, कई दफा अंधी श्रद्धा वाला भी भटकदा भटकदा पहुंच जांदा है, पर कई दफा विचारां दी परिक्रमा करन वाला विचारां दे च ही फसा रह जांदा है, और ईश्वर तक पहुंचना उस लई औखा हो जांदा है। विचारक अपने विचारां दे च ही कई दफा उलझ के जो है रह जांदा है। हजारों साल फिलोसफी की तना तनी रही, खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। आखिरे कितना भी खपिए, कितना भी विचारीए, तां भी विचारदियां विचारदियां पता चलदा है कि जिथों असी शुरू होई सी उत्थे ही खड़े, एक कदम भी अगे नहीं वधे। विचार विचार के जद ऐसा पता चले कि ओ साडे विचारां च नहीं आउंदा, ओ साडी सोच मंडल दे च नहीं आउंदा, ओ साडी बौद्धिक पकड़ दे च नहीं आउंदा, बस उसे क्षण चाहिदा है
ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਤੜਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹੇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ, ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ, ਪਾਨੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਫੇ, ਤਿਉਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਪਰੋ ਨਾਮਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੜਪਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਚ ਇੰਜ, ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਛਲੀ ਤੜਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗਊ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸਦਾ ਬਛੜਾ ਉਹ ਤੜਪਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਵੀ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਛੀਣ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਝਣਾ, ਬਸ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਘਟੀ, ਭਾਵਨਾ ਘਟੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਘਟਿਆ, ਰਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਰਸ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਕਥਾ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਜੋੜੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਜੋੜੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਗ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ। ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਗਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਾਰੀ, ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਤੜਪਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਚ, ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸ਼ਰਧਾ ਛੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਧਰੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਧਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਸ ਆਨੰਦ ਔਰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਤੜਪਣਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਹੇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ, ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਪੂਰਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਲੇਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੈਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੂਝ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਭਗਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਭਗਤ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਭਗਤ ਨੇ ਤੇ ਰਸ ਮਾਣਿਆ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿਰਮੌਰ
श्री रविदास जी महाराज कहने पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए अनुभव भाव न तरसे लोहा कंचन रिंड होए कैसे जो पारस नह परसे। श्री कबीर जी महाराज का भी ऐसा कहना है हर जस सुने न हर गुण गावे बातन ही असमान गिरावे ऐसे लोगन सो क्या कहिए जो प्रभ किए भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रहिए। ए भगत विचारां दा ते सिर्फ प्रयोग करदे ने जीवदे ने हिरदे दे तल ते भावना दे तल ते और जद भावना करके प्रभु नाल जुड़दे ने तो इन्हां दे अंदरों जो गीत फुटदे ने जो ज्ञान फुटदा है वो इस तरह है जैसे कि पहाड़ां दे चों कोई झरना वग तुरिया है। श्री नामदेव जी महाराज दे विचार कितने बुलंद ने ज्ञान कितना महान है उन्हां दे एक पावन पवित्र शब्द तो पता चलता है आम गाथा है और ओ भाई साहब भाई गुरुदास जी ने भी लिखी है कि कम किते प्यो चलिया नामदेव नू आग सुनाया। नामदेव नू सारी गल सुना दिती ठाकुर दी सेवा करी घर विच मूर्तियां रखियां सन ते नामदेव नू कहंदे ने तू अमृत वेले उठना है तू ठाकरा नू इशनान कराण लई नदी तों मांझी हुई गागर विच जल भर के लियाउणा है पवित्र गागर विच जल भर के लियाउणा है ते ठाकरा नू इशनान कराणा है बगीचे विच जाके फुल तोड़ने ने बगिया विच जाके ते तोड़े हुए फुलां दी माला बना के ठाकर दे गल विच पानी है। सिर्फ इतना ही नहीं घर विच जेड़ी कपिला गौ है उसका दुध चोके तू ठाकरा नू पिलाना है। यह सारा कर्म जो उन्हां दा पिता नित करदा सी चूंकि अज किधरे बाहर कम कार लई जा रहे है तो नामदेव नू कह दिता है जितने चिर तक मैं नाम आ ए सारा पूजा ए सारा अर्चा बंधन तू करना है। अमृत वेले बने हुए रोजाना दे सुभाव मुताबक आप उठे ने ब्रह्म मुहूर्त विच गागर पित्तल दी सिर ते रखी है नदी दे तट ते गए ने गागर खूब मांझी है इशनान कीता है गागर नू भरे है ता आप दी दृष्टि जल जंतुआं ते पै गई मछलियां ते पै गई कुछ मेंढक सन उना ते पै गई कुछ कछुए सन उना ते पै गई आप दे अंदरों अमर गीत दा झरना इंज फुटिया आनी ले कुंभ भराई ले उद्दक ठाकर कोई स्नान करो पर 42 लख जीव जल में होते बीठल भेला काहे करो। महाराष्ट्र विच प्रभु दा एक नाम बीठल भी है उसे दाई आप प्रयोग कर देने बीठल नाम दा एक मंदिर भी है बीठल मंदिर पंडरपुर देच और ओ तीर्थ है और बहुत वड्डी पूर्णमाशी वाले दिन भीड़ रहती है। श्री नामदेव जी महाराज कहते हैं ऐ बीठल दस मैं की करा मैं पानी भरे है गागर मांझी है तेनू इशनान कराना है पर करा कि पानी पवित्र नहीं है क्यों के 42 लख जूनियां ते आखर पानी दे चिने ते ओ सारा क्रिया कर्म पानी दे च ही कर दिया ने जन्म उना दा पानी दे च जीवन उना दा पानी दे च मरण उना दा पानी दे च सारी क्रिया पानी दे च और ए कुल मखलूक दा अद्धा हिस्सा पानी दे च। पुराने शास्त्रां दी गणत दे मुताबक 84 लख जूनियां ने जेदे चों 42 लख जल दे च ने 21 लख थल जंतु ने और 21 लख नभ जंतु ने आकाश दे च उड़न वाले। इस ढंग नाल 84 लख दी गिनती कीती गई है पर ए अद्धा जीव मंडल सारे दा सारा पानी दे च है। तो नामदेव कहंदे ने जद जीवन पानी दे च है जन्म पानी दे च है मरण पानी दे च है ए पानी पवित्र नहीं हो सकदा है इते अपवित्र है। हे प्रभु मैं इस जल दा तेनू इशनान नहीं कराना खाली गागर लेके आ गए और सोच रहे ने अज ठाकरा नू इशनान नहीं कराना पानी ते अपवित्र है ते ए ते ठाकरा नू अपवित्र करना होवेगा पर ए सोचनी
آپ دے اندر جو پھٹی ہے غالباً 11 سال دی عمر وچ، چھوٹے نے، بچے نے، پتا باہر جا رہے ہے تے پتر نو سمجھایا ہے یہ سب کچھ تو روز کرنا ہے، پر اس معصوم بالک دے دھارمک سنسکار اتنے پربل نے تے بدھی اتنی اجول ہے، آپ کہندے نے نہیں یہ جل تے اپوتر ہے، تے اپوتر جل دے نال ہے پربھو میں تینوں اشنان کراواں تے کیویں کراواں۔ چھوٹی جی ٹوکری لے کے آپ بگیا وچ گئے، پھل توڑن لگے نے تے پھلاں دے اتے منڈلا رہے نے بھونرے تتلیاں، آپ دیکھنے آئی ایک دم حیران ہوئے کہ شہد دیاں مکھیاں بھی پھلاں دے چوں رس کڈ رہی ہیں، آپ کہندے نے پھل بھی پاون نہیں نے، پوتر نہیں نے، انہاں دا رس تے بھونرے لے جاندے نے، انہاں دے چوں رس تے شہد دیاں مکھیاں کڈ کے لے جانیاں، تتلیاں کڈ کے لے جانیاں، لہذا انہاں پھلاں دی مالا پرو کے ہے ٹھاکر میں تیرے گلے کس طرح پاواں جدکہ انہاں پھلاں دا استعمال بھونرے پہلے ہی کر لیندے نے، تتلیاں پہلے ہی کر لیندیاں، شہد دیاں مکھیاں پہلے ہی کر لیندیاں نے، آ نیلے پھول پروئی لے مالا ٹھاکر کی ہوں پوج کروں پر پہلے باس لئی ہے بھونرے بیٹھل بھیلا کاہے کروں۔ ہو بہو اس طرح دا واق بھگت رویداس جی مہاراج دا وی ہے، مائی گوبند پوجا کہاں لے چراؤں آور نہ پھول انوپ نہ پاؤں، دودھ تا بچرے تھنوں بڑاریو پھول بھور جل مین بگاریو، ہے پربھو میں کیویں پانی نال تینوں اشنان کراواں، او تے جل اپوتر کر دتا ہے مین نے، پھول تے اپوتر کر دتے نے بھوریاں نے، تتلیاں نے، شہد دیاں مکھیاں نے۔ ہن آپ نو خیال آیا کہ تیجا کم پتا نے سونپیا سی کپلا گو دا دودھ ٹھاکراں نو پلانا، تو اپنی ماتا نو آکھیا گو چو دیو دودھ چاہیدا ہے، نام دیو دی ماتا نے گو دا بچڑا کھولیا، بچڑا تھن چونگن لگ پیا تے نام دیو جی مہاراج اپنی ماں نو کہندے نے پہلے اے بچڑا دودھ پیے گا، ہاں میرے بچے پہلے بچڑا دودھ پیے گا تا ہی گو دودھ دیندی، تو آپ کہن لگے ماں مینوں اے دودھ نہیں چاہیدا، اس دودھ دا بھوگ میں ٹھاکراں نو نہیں لوانا، کیوں آنی لے دودھ ردھائی لے کھیرن ٹھاکر کو نیوید کروں پر پہلے دودھ بتاریو بچرے بیٹھل بھیلا کاہے کروں، اے بیٹھل دس میں کی کراں، اے دودھ تے پہلے چونگ گیا بچڑا، انہیں پوتر کر دیتا ہے تھنا دچ دودھ تا بچرے تھنوں بٹاریو، بھگت رویداس جی مہاراج کہندے نے آنی لے دودھ ردھائی لے کھیرن ٹھاکر کو نیوید کروں پر پہلے دودھ بٹاریو بچرے بیٹھل بھیلا کاہے کروں، اے بیٹھل دس میں کی کراں، دودھ تے اپوتر ہو گیا، یہ تے پہلے بچڑے نے پی لے تے میں تے تینوں پہلے بھوگ لوانا سی، پر یہ تے بچڑا ہی پہلے بھوگ لا گیا اور تھنا دچ ہی جھوٹا کر گیا، تو میں اس دا بھوگ لواواں تے کیویں لواواں، اج پوجا نہیں ہوئی، اج ٹھاکراں دا اشنان نہیں ہویا، اج ٹھاکراں دے اگوں دودھ نہیں رکھیا گیا، دودھ نہیں پلایا گیا، آپ بیٹھے نے سوچ دے چ پتا ناراض ہوئے گا، پتا اوکھا ہوئے گا، اس طرح دیاں سوچاں دے چ آپ پئے نے تے آپ دے اندروں امر دھنی انج اٹھی، ای بے بیٹھل او بے بیٹھل بیٹھل بن سنسار نہیں، تھان تھنانتر پرنوے ناما پور رہو تو سرب مہی، ہے پربھو جد میں سوچیا کہ تینوں اشنان کراواں تا تو مچھی ہو کے پہلے آپ ہی جل وچ اشنان کر رہے ہیں، میں تینوں کی اشنان کراواں، ہے پربھو جد میں تینوں سوچیا تیرے بارے سوچیا کہ اشنان کراواں تا اے وی وچار پیدا ہوئے کہ اشنان تے اس نوں کرایا جاندا ہے جو میلا ہو جائے، کیا تو میلا ہو جانا ہے، صاحب کہندے نے گرو ارجن دیو جی مہاراج ہم میلے تم اوجل کرتے ہم نرگن، تو داتا تو تے اجل ہے، تو تے پاون ہے، تو تے پوتر ہے، میلے تے اسی ہو جانے ہیں، سڈا تن میلا سڈا من میلا، ہے پربھو تو تے نرمل ہے، تو تے سوچھ ہے،
तू ते पावन है, तू ते अति पवित्र है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहंदे ने इशनान ते मैं तेनू तां करावां कि तू मैला होवे, पर तू ते कदी मैला होंदा ही नहीं। और तेनू की इशनान करावां, तू जल जंतु होके अठे पैर जल विच रह रहे हैं, सागरां विच रह रहे हैं, दरियावां विच रह रहे हैं, झीलां विच रह रहे हैं, तेनू की इशनान करावां। इंज ब्रह्म ज्ञान दा पूर्ण बोध भगत नामदेव जी महाराज दे अंदरों पैदा होया, हे प्रभु जल विच तू, मच्छी विच तू, तू ते व्यापक है। ईबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। श्री नामदेव जी महाराज अगां फुल्लां बारे ऐसा कहंदे ने, हे प्रभु जद मैं सोचिया कि तेनू फुल्लां दी माला बना के पहनावा, ते तू तितली होके, शहद दी मक्खी होके, भौरा होके आप ही पहले रस ले लेना, तेनू की मैं माला पहनावा। जद मैं सोचिया तेनू दुध पिलावा, पर तू बछड़ा होके आप ही पहले दुध पी लेना, आप ही भोग ला लेना, गऊ तू, बछड़ा तू, दुध तू, तू ही तू है। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। इत्थों ऐसा भी पता चलता है कि श्री नामदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म दे उपासक ने, व्यापक ब्रह्म दे उपासक ने। आप दे ऐसे बोल भी ने, हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीत, नामे सोई सेवया, ना देहुरा ना मसीत। हिंदू लभदा है मूर्तियां दे प्रभु नू, मुसलमान लभदा है खानकाह दे चों, पर नामदेव जी महाराज कहंदे मैं ते जिधर देखदा तेरे

तू पूजे देहोरा मुसलमान मसीद ना में सोई सेविया ना देहोरा ना मसीद तो फिर किथे है जे मंदिर ते मस्जिद दिच नहीं तो फिर किथे है तो नामदेव कहंदे सबे घट राम बोले राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे मेरा राम घट घट दिच बोल रहे है और राम तो बिना कौन बोल सकता है राम ही बोल रहा है पशुआं दे राम ही बोल रहा है पक्षियां दे राम ही बोल रहा है मनुखां दे राम ही बोल रहा है पवन दी शांशां दे राम ही बोल रहा है सागर दे गर्जन दे बदलां दे गर्जन दे और सागर दी गर्जन दे च ही नहीं प्रभु बोल रहा है कोयल दी कू दे बुलबुलां दे चहचहाण दे हे प्रभु तू ही ते बोल रहे हैं सबे घट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे हे प्रभु तू ही बोल रहे हैं सब घट दे अंदर बोल रहे हैं तो इस तरह जो व्यापक ब्रह्म है इस तरह का जो व्यापक परमात्मा है श्री नामदेव जी महाराज उस दे पुजारी ने नामदेव जी महाराज की दृष्टि दे प्रभु एक व्यापक सत्ता है वो अखंड ज्योति है खंडित नहीं है टुकड़िया टुकड़िया दे च नहीं है अखंड ज्योति है व्यापक है पर उस तक किवें पहुंची है ते उसनु किवें प्राप्त करिए नामदेव दे ये आखरी बोल आप जी दे समक्ष भेंट करा श्री नामदेव जी महाराज दा फरमान ज्यों जल मांझे माछलो मार्ग पेखणो न जाई ज्यों आकाशे पंखी अलो खोज निरखो न जाई उस प्रभु नु किवें तलाश करिए ते उस परमात्मा तक किवें पहुंचिए जो व्यापक है किवें पहुंचिए मार्ग की है आखिर रस्ता की है तो नामदेव कहंदे ने जैसे जल विच मच्छी चलदी है ते रस्ता बनदा है उंज बना बनाया कोई रस्ता नहीं है बना बनाया कोई मार्ग नहीं है चलदिया ही मार्ग बनदा है आसमान दे बने बनाई कोई सड़क नहीं है पंछी उड़दा है ते मार्ग बनदा है उंज कोई मार्ग नहीं उंज कोई रस्ता नहीं बस उड़दिया ही रस्ता बनदा है ते मच्छी दे चलदिया ही सागर विच मार्ग बनदा है उंज कोई मार्ग नहीं मनुख जैसे जैसे राम दा रटन करना आरंभ कर देंदा है राम दा मार्ग बनना भी शुरू हो जांदा है गुरु गुरु दी आराधना जैसे मनुख आरंभ कर देंदा है गुरु गुरु दा नाम लेना जब शुरू कर जांदा है तो गुरु दा मार्ग भी बनना नाल शुरू हो जांदा है बना बनाया मार्ग नहीं है इत्थे जपदिया मार्ग बनेगा इत्थे नाम उचारण करदिया ही मार्ग बनेगा जमीन दे उत्ते सानू बनिया बनाईया सड़कां मिल सकदियां चलना सानू पैंदा है सड़क नहीं बनानी पैंदी पर इत्थे अध्यात्मक मंडल दे उत्ते ऐसा है कि असी जद चलांगे तो चलदियां ही सड़क बनेगी जैसे असी पृथ्वी ते भी कई दफा देखदे हां कि लगातार मनुख किसे एक थां तो लंघन तो अपने आप पगडंडी बन जांदी है एक रेखा बन जांदी है एक मार्ग बन जांदा है अध्यात्मक मंडल दे च ऐसा है वाहिगुरु जपना आरंभ कर देईए बस आरंभ कर दिया ही मार्ग बनता है जैसे मच्छी चले तो रस्ता बनता है उंज कोई रस्ता नहीं इत्थे इंज पहुंचना है परमात्मा तक जिवें मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचती है जिवें पक्षी एक थां तो दूसरे थां तक पहुंचता है इसनु खोले है परम दार्शनिक संत गुरु घर दे वेद व्यास भाई गुरदास ने गुरुमुख खोज अगम है ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा गुरुमुख खोज अलख है ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा गुरुमुख जिड़ा है ओ परमात्मा दी खोज इस तरह कर लेंदा है जिवें सागर विच मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदी है जिवें पक्षी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदा है बिना मार्ग दे उड़दिया ही मार्ग बनदा है चलदिया ही मार्ग बनदा है इस तरह गुरु का सिख जद जपदा है तो जपदिया ही जपदिया परमात्मा तक पहुंच जांदा है ईश्वर तक पहुंच जांदा है अकाल पुरख तक पहुंच जांदा है हू बहो श्री नामदेव जी महाराज यही कुछ कह रहे ने मार्ग बना बनाया नहीं है राम राम जपदिया ही राम दा मार्ग बनेगा और राम दी लीनता नसीब होवेगी राम नाम विच लीन बिठल बिठल दिच लीन श्री नामदेव जी महाराज अपने गीतां दे राही जगत नूं बिठल दिच लीन करदे रहे राम दिच लीन करदे रहे
और भ्रमण करदिया करदिया अनेकां नूं आपने राम विच लीन

0: टेस्टी जी सब्जी भले खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण @604581-1900।

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Bad and Sardarni Surinder Kaur Bad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-7790.
2: फैमिली केयर फार्मेसी
3: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो
3: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
2: जां कॉल किरण एट 604-581-1900
5: गुरु तेग बहादुर साहब महाराज गुरु हरगोबिंद साहब दी छेवीं संतान ने छेवीं संतान तां शब्द वरते है हजूर दे आगमन तो पहला गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे चार बेटे और एक बेटी है बाबा गुरदित्ता जी बीबी वीरो जी बाबा अटल राय जी बाबा सूरजमल जी और बाबा अनी राय जी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का आगमन श्री अमृतसर साहब की धरती ते होया है हजूर महाराज जी का जिस जगह ते आगमन होया उथे गुरु रामदास गुरु अर्जुन देव ते गुरु हरगोबिंद साहब जी ने श्री अमृतसर साहब रहिंदिया अपनी रहायश रखी ते उस स्थान नूं असी शब्द वरतने गुरु का महल अमृतसर साहब दी धरती ते उस गुरुद्वारे दा नाम गुरु का महल है गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दा आगमन अमृत वेले को है इतिहास कहिंदा है के सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दरबार साहब आसा की वार दा कीर्तन सरवण कर रहे सन ते उस वक्त समाप्ति वेले सेवक ने जाके बेनती कीती महाराज आप जी दे ग्रह विखे साहबजादा जी दा जन्म होया है महाराज है गुरबिलास पातशाह छेवीं भी जेडे शब्द लिखे ने महाराज जी ने अपने इस बेटे नूं हथां चुकिया उस वक्त जेड़े शब्द कह भावे असी श्रद्धा नाल देखांगे हर गल

0: गिफ्ट प्राइस दीजिए, सब्जी फल खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण @604581-1900।

0: प्राइस दीजिए सब्जी भले खाना है
1: फ्रूटी क्या नहीं जाना है
0: फ्रूटी क्या नहीं जाना है
2: फ्रूटी क्या नहीं जाना
3: फैमिली केयर फार्मेसी
4: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन
3: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो
4: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो
3: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो
4: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन
5: थ्री लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
3: जा कॉल किरण एट 604-581-1900
6: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस हिसाब किताब भी बहुत औखा है पहला मेनू भी यही लगता सी पर जदों मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा ओदो तो मैं टेंशन फ्री हो गया जिन्हां नू है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा टैक्स पेपर फिल करने होन बुककीपिंग होवे या किसी भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नू कॉल 604-325-8370 604-325-8370

0: प्राइस दीजिए सब्जी भले खाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना जाना है फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगदा सी पर जदों मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा ओदों तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नूं है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन बुककीपिंग होवे या किसी भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नूं। कॉल 604-325-8370 604-325-8370।
5: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।

0: भी भले खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण @604581 1900।

0: तेजी सब्जी भले खाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.